एक भगवान एको एक कार्या पूर्ण पूर्य प्रभ्या पनक विचार एक तय पै एक रात प्राचल गए मंत्र अंतर एक प्रवरा था गुरु प्रथा नानक दाता स्वलोक फिर

प्रकृतिस्तमात कोय अलपावे बिरला कोय जनजाख्या से चंद्रवता ने पूर्ण पुरुक ने डोला ने सोबर परे प्रेम रस रंग उपज चाव साधिक संग पर शरणान सब त्याग अंतर प्रगाथन दिल विलाग बड़पागी जपया प्रभ सोए नानक नाम रते सुकोय सेवकी मनसा पूरी पै सदगुर ते निर्मल मत लय जन को प्रभ हो दयाल सेवकी नो सदा निहार बंधन काट मुगत जन पया जन मरण दुख भ्रम गया यजमे सरदा सा पूरी राम रया सा संग जोरी जिसका सा तिलया मिलाये नान भक्ति नाम समाये सुख मित्र काल न पाने सुख मित्र जय किया जाने सुख मित्र जन सब कुछ दिया सुख मित्र जय जीवन जिया सुख मित्र दे अग्न में राखे गुरु प्रता को बिरला लाखे सुख मित्र दे बिगते काटे जन्म जन्म का टूटा गांडे गुरु पूरे तत् बुझाया प्रभु अपना नान जंत आया

दयाल भगत वचल सदा कृपाल अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा कर्त व्रतपाल आद पुर कारण करता भगतना के प्राण धार जो जो पैसोय पनीर भगत पाए लावे मन हित हम निर्गुनिया नेचान नान तुमरे स्वर्ण पुरुख पर वान सर्व वैकुंठ मुक्त मोग पाए एक निमक हर के गुण गाय अनकराय भोग बड़ियाई हर के नाम की कथा मन पाई बो भोजन का पर संगीत रसना जपती हर हर नींद भली सुकरणी सुभ तनवंत हृदय पूर्ण गुरुमंत स्वाद

पशुपति जब कार्य कथना दृष्टिता पापन तब गते होता जब तारी सुमा तब बैर ब्रो के शंख मा जब इसका बरन चैन न जब तब हर

अपने जो तर है तब कवन डर कवन कत डर है अपने चलता आप करने हर नानक ठाकुर अगम्य अपार अपने आशीष चुके अपने असंता जन मन कहो कहा बिना सन जब

जी जंतर सब ताके आ दीन दयाल अनाथ को ना जिस राखे तिस को न मारे सो मुआ जिस मनो विचारे तिस का को दाए सब चरे एक निरंजन।

दर्शन श्रेष्ठा चरण कमल जाके अनूप सबल दर्शन सुंदर रूप तन से वासे परवानंतर दमे पर प्रधान जिसमन बसे सोत निहाल ताके निकट न आवत काल अमर पहे अमरा पद पाया सा संगनान करते आया सुरो ज्ञान अंजन गुर दिया ज्ञान अंधेर बिना सो हर कृपा ते संत पेटिया नानक मन पर गा सस्पदी संत संगंतर प्रवटिटा ना प्रभु काला का मीठा सकल समग्री एक कटुमायन करंगना निर्दिष्टाय नौन दमृत प्रभु का नाम देहि में इसका विश्राम सन समाधन तैनात कहना जय अचल विस्मा तन दिखा जिसाव दिखाए नान तिजन सो दीपाए सो अंतर सो बाहर अनंत गड़गड़

वेद ब्रांच मृत में देख सी और स्वर्ण खतन में एक बाणी प्रभु की सबको बोले आप डोलना कब हूं डोल सर्व

किने काज करा भला कर दो त्याद ने की आप जाने अपने जी की आप साच तारी सब साच ओत पोता बन संगलाए ता के गत कहीं न जाए दूसरो इतना सो जी पाए तिसका किया सा प्रवान गुरु प्रसाद नानक हो जान जो जाने ते सदा सुख आए आम लाए ले प्रसो यतनवंत कुलवंत पातवंत जीवन मुक्त जिस हृदय भगवान तन तन तन जन आया दुबरसा सब जगत राया जन आवन का यह सुहाओ जन कह संग जित आवे नाओ आ मुगत मुगत करे संसार नानक ते जन को सदा नमस्कार सलोक पूरा प्रभ आराध्या पूरा जका नाओ नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ अस्पति पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेग सास सास सिमरो गोविंद मन अंतर के उतरा चंद आसन त्यागो तरंग संजना के तोर मन मंग आप छोड़ बेनती करो सासंग गुण सागर तरो हरतन के पल्यो पंडार नानक गुर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहजनंद सासंग पद परमानंद नरक निवार उदारो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो चित्रित नारायण एक एक रूप जाके रंगाने गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख पंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का हे आधार

प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन अर्गम्मा अगम अपारा सब त्या मैं सब त्या मैं तुद जी हर सच्चे सिरजनहार सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दा तारा अर त्यावो संतो जी सब दुख विसार नहारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंदर सर्ब निरंतर जी हर एको पुरख समाणा एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज बिढाणा।

धरा जब आए सुख प्रभु को भयो जन्म धरा जग आए अब मैं कथा संक्षेप ते सब हूँ कहत सुनाए तब बाज दोहरा ठाड़ भयो मैं जोर कर बचन कहाँ सिर न आए पंथ चला तब जगत मैं जब तुम करो सहाय दोहरा जे जे तुमरे ध्यान गाओ नितुड़ ध्याय है संत अंत लहेंगे मुक्त फल पामेंगे भगवान दोहरा कालपुर की देह मो कोटक विषण महेश कोट इंद्र ब्रह्मा गिते रव सस करोर जरे दोहरा राम कथा जुग जुग अटल सब गई।

मानक करते के केते वेश राग तनाश्री महला पहला गगन मै थाल रव चंद दीपक बने तारिका मंडल जनक मोती।

सहस्ताव गंध एव चलत मोही। सब मैं जोत जोत है सोए, तिस दै चानन सब मैं चानन होए। गुरसाखी जोत प्रगट होए, ज्योतिष भावै सो आरती होए। हर चरण कवल मकरंद लोभित, मनो अंधिनो मोहे आही प्यासा। कृपा जल दे नानक सारंग को, होए जाते तेरा नाय वासा। राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा। काम क्रोध नगर भो परया, मिल साधु खंडल खंडा है। पूर्व लिखत लिखे गुर पाया, मन हर लिव मंडल मंडा है। कर साधु अंजलि पुन वड्डा है, कर दंडौत पुन वड्डा है। राहाओ साकत हर साधना जाण्या, तिन अंतरों मैं कंडा है। ज्यों ज्यों चला चुबै दुख पावह, जमकाल सह सिर डंडा है। हर जन हर हर नाम समाण, दुख जन्म मरण भव खंडा है। अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर, भव सोव खंड ब्रह्मंडा है। हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे, हर राख राख वड वड्डा है। जन नानक नाम आधार टेक है, हर नामे ही सुख मंडा है। राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा। करो बिनंती सुनहो मेरे मीता, संध टहल की बेला। इहा खाट चलो हर लाहा, आगे बसन सुहेला। औद कट है।

मैं तरयो ब्रह्म ज्ञानी जिसै जगाए पियावै एहो रस अकथ कथा तिन जानी।

आत्मिता सुतमीत न पाई मन मुहा नाम तेरा संग सहाय जय महाभयान दूत जम दलाय तह केवल नाम संग तेरा चलाय जय मुश्किल होवे अत भारी अर को नाम खिन माहे उदारी अनुक पुनः चरण करत नहीं तराय अर को नाम कोट पाप पर हरय गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पाव सुख नेरे सगल सृष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जपत होए सुखिया लाख करोरी बंद ना पराय हर का नाम जपत निस्तराय अनक माया रंग तिख न

हर जस गर्त संध दिन रात हर औखद साधगमात। हर जल के हर नाम निदान पार ब्रह्म जन किन्नु दान मानत

अष्टपदी जय प्रसाद शक्ति अमृत खाहे तिस ठाकुर को रख मन माहे जय प्रसाद सुगंधत लावे तिसको सिमरत परम गद पावे जय प्रसाद बसे सुख मंदर तिसे त्याए सदा मन अंदर जय प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पहर सिमरो तिस रसना जय प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई त्यावन जोग जय प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे तिसे त्याग तबर लुभावे

संग अगोचर बिलाय साधक संग सदा प्रफुलाय साधक संग आवय बस पंचा सा संग अमृत रस पुंचा सा संग है सबकी रेन साधका संग मनोहर बैन साधक संग ना कतहु तावै सा संग अस्तित मन पावै साधक संग माया ते भिन्न सा संग नानक प्रभु सुप्रसन्न

ना भया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टमृत भर्षी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन दे मुगता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता, ब्रह्म ज्ञानी का पूजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म ज्ञानी एक प्रयास, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी पर्वकार महा, ब्रह्म ज्ञानी का नाही तंदा, ब्रह्म ज्ञान ले तावत बंदा, ब्रह्म ज्ञानी का वे सोफला, ब्रह्म ज्ञानी सफल फला, ब्रह्म ज्ञानी संग सकल उदार।

ऐसा मन तैसा अभिमान, ऐसा रंग तैसा राजान, जो बरताए साई जुगत, नानको पुर कहिए जीवन मुगत, पार ब्रह्म के सगरे ठाऊं, जिस जित कर राखे तैसा दिन नाऊं, आपे करन करामन जोग, प्रभावे सोई फन होग, पसरु आपे आनंद तरंग, लखे ना जाहे पार ब्रह्म के रंग, जैसी मात

वस्तुपदी पूरे गुरु का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर भेग सा सिमरो गोविंद मन अंतर की उदरय चंद आस नित्या गोत्र संतना की धूर मन मंगा आप छोड़ बेनती करो सा संग अगन सागर तरहो हर धन के परले हो पंडार नानक गुरु पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद सा संग भज परमानंद नरक निवार उदारो जियो गुरु गोविंद अमृत रस पियो चित चितवो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल भगत बशल सदा कृपाल गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख पंजन पूरन कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का ए आधार उत्तम श्लोक साध के बचन अमरीक लाल ए रतन सुनत कमावत होत उदार आप द्रय लोके निस्तार सबल

निदहनम। गाविए सुनिए मन रखिए भाव दुख पर हर सुख कर लै जाय। गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहे आसमाय।

निरंकार असंख जाप असंख पाओ असंख पूजा असंख तापताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रह उदास

ओंकार असंख मूर्ख अंध कोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गल वढ हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़े आर कूड़े फिराहे असंख मिले शुमल भख खाहे असंख निंदक।

नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत्र जंत्रं नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सचिदानंद सर्वं प्रणासीन रूपे रूपे समस्तोल निवासी सदा सिद्धदा बुद्धदा बृद्धकर्ता अदो उर्द अर्दं अगं ओघहर्ता परम परम परमेश्वरं प्रोजपालं सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं अशेदिय भेदिय नामं कामं समस्तो पराजी

शांतव प्रसाद गोबिंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियं करियं निर्नामे अकामे पजहं प्रयाशंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पास है चतर चक्र वास है चतर चक्र मान्य है चतर चक्र धान्य है चाचरी शांत

पवित्रय परथि से आदि से अदृश्य अकृश्य भगवती शांत वय प्रसाद कहते क्या छिज दे सह क्या भिज भेस है क्या गांज कर्म है क्या भांज भरम है क्या भिज लोक कै के दित सोक कै के भूत वर्ण है के विभूत कर्ण के राजं प्रभा है के धर्मं तुझा है के अशोक वर्ण है के सर्वा अपर्ण के जगतं कृति है के शत्रं शत्रि

राज है, संवाहतल सलाम है, सदैव लय काम है, निर्बाध स्वरूप है, अगाध है, अनूप है, ओंग आद रूप है, अनाद स्वरूप है, अनंगी नामे त्रिपंगी त्रिकामे त्रिभग त्रिभादे गंजे गादे सुभंग सर्भागे सो सर्वा अनुरागे त्रिपुक्त स्वरूप है, त्रिपुगत स्वरूप है, अछेद है, अछूत है, के नरकंग प्रनास है, पृथ्वी अल प्रवास है, निरुक्त प्रभा है, दैव सदा है, विभुक्त स्वरूप है, प्रजुगत अनूप है, निरुक्त सदा है, विभुक्त प्रभा है, अनुक्त स्वरूप है।

है सुनिंत है अलेख है अदेख है अलेख है अपेख है अटाह है अगाह है असंभ है अगम्भ है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजाद है चरपट शांत व प्रसाद।

जाते न पाते। साकं श्री कह मितो मी कह सदैव प्रभा है अजय है अजा है भगवती शांत व प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजर हजूर है हमें सर सलाम है सुबह तल कलाम है।

पाई। संबद 17 सह बन जय अर्ध सह सुफन तीन कहि जय भाद्रव सुदी अष्टमी रविवार तीर सतद्रव ग्रंथ सुधारा सवैया।

जी की फतेह। गुरु प्रसाद संघ जी आप जी ने गुरुद्वारा साहिब हरिमठ तो अमृतसर दीवान श्री आसा की वार के शब्द कीर्तन जोड़ रहे सन भाई जसपाल सिंह जी, श्री पौंटा साहब जी वाला कीर्तनी जथा भाई साहब जथे बहुत बहुत धन्यवाद। आम सतगुरु जी वालों बख्शिश हुए अमृत वेले पित्र मुखवाग की कथा आप जी सरण करोगे भाई गुरमेल सिंह जी कैनेडा वाले, उन्होंने पासों प्यार सरण करो जी। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

त हरे ब्रह्मांड खंड हर ताको नाम जपी जा रे। मन की मत त्यागो हर जन हुक्म बूझ सुख पाइया रे। जो प्रभ करे सोई पहल मन सुख दुख ओही त्याइया रे।

जी की फतेह। जुगो जुग अटल शब्द गुरु धन धन आदि साहिब। श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दी पावन पितर हजूरी जुड़ बैठी साध संगत जी, वडभागी हो आप जी अमृत वेले तो ही गुरु साहिब जी दे दरबार दी हाजरी भर रहे हो। अमृत वेले तो ही गुरु घर विखे जुड़ के संगतां वल्लों नाम जपया गया, उपरंत गुरु महाराज जी ने सोने तख्तां ते विराज मनु के दर्शन दारे बख्शिश किए। उपरंत गुरु पातशाह जी की हजूर सुखमनी साहब जी के पाठ पंजाब बाणी के नेत्रनेम श्री आसा की वार दे शब्द कीर्तन पितर हुकमनामे की शब्द विचार गुरु पातशाह जी के दर से हाजरी भरी आप जी ने अमृत वेले तो ही गुरु घर विखे सेवावां करके पितर कथा कीर्तन सरवण करके लाहे प्राप्त किए। गुरु महाराज जी कृपा करन आप इस मुसंगत की हाजरी दर प्रवान करन, दरों करों गुरसिखी जीवन नामदान बख्शन। इतने अमृत वेले दवान की संपूर्णता है जी। वाहे

0: सतगुर सज्जन मिले नानक नाम मिले ता जीवा तन मन धीवे हरे नानक नाम मिले ता जीवा तन मन धीवे हरे
1: सोठ महला पंजवा खोजित खोजित खोज विचार राम नाम तत् सारा खोजित खोजित खोज विचार राम नाम तत् सारा किलबे काटे निमख राधिया गुरमुख पार उतार किलबे काटे निमख राधिया गुरमुख पार उतार हर रस पीबो पुरख ज्ञानी हर रस पीबो पुरख ज्ञानी सुन सुन महातृप्त मन पावे साधु अमृत बाणी रहो सुन सुन महातृप्त मन पावे तृप्त मन पावे साधु अमृत बाणी मुगत भुगत जुगत सच पाई है सर्व सुखा का दाता मुक्त भुगत जुगत सच पाइए सर्व सुखा का दाता अपने दास को भक्त दान देवे पूर्ण पुरख विधाता अपने दास को भक्त दान देवे पूर्ण पुरख विधाता सर्वणे सुनिए रसना गाइए हृदय ध्याई सोई सर्वणे सुनिए
0: रसना गाइए हृदय ध्याई सोई

0: गोविंद संग सच भोजन जोड़े, मन रत्ता गोविंद संग सत भोजन जोड़े, प्रीत लगी हर नाम से ए हस्ती कोड़े, प्रीत लगी हर नाम से ए हस्ती कोड़े, राज मिलख खुशियां कणी त्याय मुख न मोड़े, राज मिलख खुशियां कणी त्याय मुख न मोड़े, दर कदे न छोड़े टाडी दर मंगना, दर कदे न छोड़े
1: नानक
0: मंथन जाओ नित प्रभु को लोड़, नानक मंथन जाओ नित प्रभु को

एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच होवै सिफत खसम दी नूर अरसहों कुरसहों झटी है तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है।

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावन आइया।

सच नाम मेरा आधारू, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया, कर सांत सुख मन आए वसिया, जिन इच्छा सब पुजाइया। सदा कुर्बान कीता गुरु विटो जिस दिया एह वडियाइया।